0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: मर्सेंग डीएफएम 95 मेगाहर्ज

0: सम्पूर्ण जाँच तथा परामर्श सेवा,
1: अन्य सेवा अन्तर्गत रेबिज, टिटानस, इन्फ्लुएन्जा लगायतका खोप सेवा,
0: सामान्य शल्यक्रिया तथा प्लास्टर सेवा,
1: परिवार नियोजन सेवा,
0: मनोसामाजिक परामर्श सेवा।
1: नोट: घरमा नै गई होम भिजिट सेवा तथा आवश्यकता अनुसार टेलिमेडिसिन, टेली नर्सिङ सेवा पनि उपलब्ध छ।
0: तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता, निरन्तर हजुरकी सेवामा समर्पित सेवा मोडल हस्पिटल प्रहाली। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 0665909999, 98477969229। सेवा मोडल हस्पिटल प्रहाली, बेसी सर स्वास्थ्य।

0: Liconia.
1: Extreme energy drink.
2: सकेसम्म कोही कसैलाई बिरामी हुन नपरोस्। यदि बिरामी भई अस्पतालको सेवा लिनु परेमा अब तपाईँको सेवाका लागि सेवा मोडल हस्पिटल प्राली बेसिसर साथ लम्सुङ।
3: विगत दुई दशक अघिदेखि हजुरहरूको सेवामा समर्पित वरिष्ठ एमडीजीपी तथा सोनोलोजिस्ट डाक्टर तिलक बाबु घिमिरे सहित अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट विशेषज्ञ सेवा सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरूको साथमा सेवा मोडल अस्पताल प्राली सञ्चालन भएको छ।
2: थप जानकारी को लागि सम्पर्क 066-590-999 98-477-69-229। सेवा मोडल हस्पिटल प्राली बेसिसर स्वाद सानीमा बैंकको ठीक अगाडि।
4: ओहो दाई, टिभी बोकेर कहाँ जान लाग्नु भयो?
5: हेर न नानी, अस्ति भर्खर विदेशबाट ल्याएको टिभी बिग्रिएर हैरान भए म त बनाउन जान लागेको, अनि एउटा फ्रिज नि किन्नु थियो, बरु कुन पसलमा जाने होला?
4: हरे दाई, पनि हाम्रै बेसिसरको त्यो भीमसेन स्थान चोकमा छ नि श्रेष्ठ रेडियो एन्ड वास सेन्टर, के त्यहाँ जानुस् न। त्यहाँ त सबै घरको इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउनुको साथै ग्यारेन्टीको साथ मर्मत पनि गरिन्छ नि। बरु मलाई नि मोबाइल र घडी किन्नु थियो, एकैछिन पर्खनुहोस् है, सँगै जाने नि।
5: ल भइहाल्छ नि नानी।
6: हजुर, हामी कहाँ विभिन्न ब्रान्डका एलईडी टिभी, फ्रिज, मोबाइल, घडी, वासिङ मेसिन, भ्याकुम क्लिनर, माइक्रोवेभ ओभन, साउन्ड सिस्टम, राइस कुकर तथा अन्य विभिन्न घरायसी इलेक्ट्रोनिक सामानहरू बिक्री तथा ग्यारेन्टीको साथ मर्मत पनि गरिन्छ।
7: नोट, हामी कहाँ साउन्ड सिस्टम भाडामा पनि पाइन्छ।
6: प्रोप्राइटर पार्वती श्रेष्ठ, श्रेष्ठ रेडियो एन्ड वास सेन्टर, बेसिसर साथ, भीमसेन थान चोक, फोन 066-520-120, मोबाइल 98-460-77-745।
2: लमजुङका लागि सामसङ, कोनका, गोदरेज र टीसीएलको अधिकृत विक्रेता श्रेष्ठ रेडियो एन्ड वाच सेन्टर।
8: हेलो, मर्संग एफएम 95 मेगाहर्ज।
9: हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, दो साल से मोस्ट अवेटेड फिल्म 2.0 जिसका इंतजार भारतीय सिनेमा और पूरी दुनिया कब से कर रही थी, वो फिल्म आज हो चुकी है रिलीज। और रिलीज होते ही इस फिल्म ने मचा दिया है धमाका। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने रिलीज होते ही काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहला रिकॉर्ड तो ये फिल्म हो रही है 11,000 स्क्रीन पर रिलीज। दूसरा ये दोस्तों कि इस फिल्म को सभी साइड से पॉजिटिव रिव्यूज मिलते आ रहे हैं और ये फिल्म तोड़ने वाली है सारे रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से बाहुबली और एवेंजर जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन आज के दिन की ऑक्यूपेंसी से भी ये फिल्म ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 90% की ऑक्यूपेंसी ली है। जी हाँ दोस्तों, साउथ में इस फिल्म ने 90-95% की ऑक्यूपेंसी ली है। वहीं नॉर्थ इंडिया में इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग थी वो काफी डल थी, लेकिन इस फिल्म के पॉजिटिव रिव्यू के बाद इस फिल्म ने अपने एडवांस बुकिंग में काफी इजाफा किया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के दूसरे दिन, तीसरे दिन के कलेक्शन और चौथे दिन के कलेक्शन काफी ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म ने अपने पहले दिन काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी पाई है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने 60-65% की ऑक्यूपेंसी हिंदी बेल्ट में पाई है। वहीं केरला में इस फिल्म को मिली है 90% की ऑक्यूपेंसी, तेलुगु में इस फिल्म को मिली है 95-100% की ऑक्यूपेंसी है, क्योंकि वहां पर सभी सिनेमाघरों के जो शो है वो हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए हैं। वहीं तमिल में भी इस फिल्म के जो शो है वो पूरे हाउसफुल चल रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो कहीं ना कहीं 500 करोड़ रुपए की हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इस फिल्म ने तमिलनाडु से कमा लिए थे 148 करोड़ रुपए और हिंदी तेलुगु और केरला से इस फिल्म ने कमा लिए थे 100 करोड़ रुपए। दोस्तों, अगर इस तरह के पॉजिटिव रिव्यू के बाद अगर ये फिल्म 500 करोड़ की एडवांस बुकिंग लेती है तो ये हिस्ट्री होगी और एक रिकॉर्ड होगा जो इंडियन सिनेमा के नाम हो जाएगा। दोस्तों, इस फिल्म में रजनीकांत के रोल की काफी तारीफें हो रही है। वहीं सेकेंड हाफ में अक्षय कुमार के कैरेक्टर की काफी ज्यादा तारीफें हो रही है कि अक्षय कुमार ने एक ऐसा विलन बनकर दिखाया जो आज तक इंडियन सिनेमा में कोई नहीं बन पाया। जी हाँ दोस्तों, वहीं शंकर सर की इस फिल्म को विजनरी बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है कि उनका विजन है जो काफी अच्छा है और यह फिल्म हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से भी ज्यादा अच्छा बताया जा रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है इंडियन सिनेमा के लिए कि इंडियन सिनेमा में कम बजट की फिल्में इतना ज्यादा कमाई करती है और इतने अच्छे लेवल पर बनाई जा सकती है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चाहे इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में मिली है 65-70% की ऑक्यूपेंसी, तो यह हिंदी सिनेमा से कमा सकती है 35-40 करोड़ रुपए। वहीं साउथ में इस फिल्म को मिली है 90-95% की ऑक्यूपेंसी और यह साउथ सिनेमा से यानी कि तमिल में कमा सकती है 45-50 करोड़ रुपए। वहीं तेलुगु में यह फिल्म कमा सकती है 55-60 करोड़ रुपए और बाकी बचे केरला वगैरह जैसे स्टेट से यह फिल्म कमा सकती है 25 करोड़ रुपए। इसका मतलब यही है दोस्तों कि यह फिल्म अपने पहले दिन हिंदी से इंडिया से पूरा ग्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का हो जाएगा तकरीबन 200 करोड़, और वर्ल्ड वाइड में तो यह फिल्म ने धूम मचा के रखी है और वर्ल्ड वाइड से भी यह फिल्म तकरीबन 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है एक दिन का वो हो चुका है 300 करोड़ रुपए। दोस्तों इस फिल्म ने बना दिया है एक रिकॉर्ड जो कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में नहीं बना पाई है, वहीं इंडिया की इस कम बजट की फिल्म ने बना के रख दिया है। आपको दोस्तों क्या लगता है ये फिल्म अपना लाइफ टाइम कलेक्शन कितने करोड़ का कमा पाएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।

0: संभाल के उठो।
1: दादा चलती हूँ, अब कब मिलेंगे?
2: जब तू कहे तब।
1: परसों स्कूल के बाद आती हूँ।
2: ठीक,
1: बाय काली।
0: बाय।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: तपाईको आफ्नै रेडियो रेडियो मर्चेन्ट बीएफएम 95 मेगाहर्ज। एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी।
2: कार्यक्रम कृषि का कुरा
3: व्यावसायिक कृषि प्रवर्धन का लागि सचेतनामूलक रेडियो कार्यक्रम
2: रेडियो मर्स्याङ्दी 95 मेगाहर्ज र कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङको सहकार्य
3: कार्यक्रम कृषि का कुरा।

0: समीच हो चौदह के में बोधे लोटी पर दी रो बहंगे ने विवरण पी भी जा मुई खाता लिख खाई हमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटर बढ़ दिलवा
2: आंगी समीच हो लोटी पर दी हो छांता ही गुदी
1: बढ़ दी आप बढ़ दी लोटर खाले पर दिन बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आलन होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बने आरी
2: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेदरी जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरिलाई
4: विगत लामो समयदेखि संचालित लमजुङकै पुरानो स्थापित जयलक्ष्मी सुनचाँदी पसल जिल्लामा नै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय हलमार्क एवं मान्यता प्राप्त तिसा ज्वेलर्स एण्ड डायमण्डसँगको सम्बद्धतामा विभिन्न प्रकारका हिराका आकर्षक गरगहना सहित अब हजुरहरूको सेवामा
5: कम्प्युटर तौलमा आधुनिक मेसिनबाट कटिङ गरिएका तयारी तथा अर्डर अनुसारका आकर्षक गरगहना खरिद बिक्री तथा कुनै पनि पसलबाट किनेका गरगहना साफेट गर्नु परेमा साथै राशि अनुसारका पत्थरहरूको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्
4: प्रोप्राइटर बहादुर विश्वकर्मा जयलक्ष्मी सुनचाँदी पसल विशिष्ट नगरपालिका साथ लमजुङ सम्पर्क फोन 066-5220-209

0: तपाईको आफ्नै रेडियो रेडियो मर्स्याङ्गी एफएम 95 मेगाहर्ज। एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।